मैं भूल जाऊं तुम्हें, अब यही मुनासिब है। मगर भूलना भी चाहूं तो किस तरह, कि तुम तो हकीकत थे, कोई ख्वाब।